आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। स्कूल में हम सबके पास कोई ना कोई एक ऐसा टीचर जरूर होता है जिसका पढ़ाया हुआ चैप्टर शायद हम भूल जाए, लेकिन उससे कही हुई एक बात पूरी जिंदगी याद रहती है। एक लड़का था, पढ़ाई में बहुत साधारण, ना क्लास का टॉपर, ना किसी प्रतियोगिता का स्टार, यानी कि मेरे जैसे ही समझिएगा। कई बार कम नंबर आते तो लोग मजाक भी उड़ाते। धीरे धीरे उसे भी लगने लगा कि शायद वो दूसरों जितना अच्छा नहीं है। एक दिन परीक्षा के नतीजे आए, फिर से कम नंबर, पूरी क्लास के सामने उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी क्लास टीचर उसके पास आई। उन्होंने डांटा नहीं, ये कहा कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, हर बच्चा किसी न किसी चीज में अच्छा होता है, तुम्हें बस अपनी जगह ढूंढनी है। उस दिन शायद वो लड़का उस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसने हार मानना छोड़ दिया। पढ़ाई के साथ साथ उसने अपनी दूसरी खूबियों पर भी ध्यान देना शुरू किया। बोलने में अच्छा था, लोगों से जुड़ने में अच्छा था, और धीरे धीरे उसी हुनर ने उसकी पहचान बना दी। सालों बाद जब वो अपनी जिंदगी में कुछ बन गया तो एक दिन उसी स्कूल गया, उस टीचर से मिला। टीचर ने मुस्कुराकर पूछा, पहचाना मुझे? लड़के ने कहा, मैडम अगर उस दिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद मैं खुद पर कभी भरोसा नहीं कर पाता। सच तो ये है दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी सलाह नहीं चाहिए होती। कभी कभी किसी टीचर का एक छोटा सा विश्वास एक बच्चे की पूरी दुनिया बदल देता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसे टीचर है तो आज उन्हें एक थैंक यू जरूर कहिए, क्योंकि कुछ हीरो किताबों में नहीं क्लासरूम में मिलते हैं। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: सुबह आंखें खुलते ही हम में से कई लोग सबसे पहले फोन चेक करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, नोटिफिकेशन, बरोबर ना। लेकिन एक काम ऐसा है जो फोन चेक करने से पहले हर एक इंसान ने करना चाहिए, पानी पीने का। जी हाँ, रात भर जब हम सोते हैं तब हम कुछ खाते पीते नहीं, सुबह उठने पर बॉडी को फ्लूड की जरूरत होती है, यानी कि पानी की। इसीलिए एक ग्लास पानी से दिन की शुरुआत एक सिंपल हेल्दी हैबिट हो सकती है। पानी बॉडी को हाइड्रेट रखने का काम करता है और नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए जरूरी है। ये डाइजेशन को सपोर्ट करता है और कॉन्स्टिपेशन से बचने में भी मदद कर सकता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, सुबह गर्म पानी पीना कोई मैजिक डिटॉक्स नहीं है। बॉडी को डिटॉक्स करने का काम हमारे लीवर और किडनी नेचुरली करती है, इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर का पानी भी परफेक्ट, एकदम परफेक्ट रहेगा। सिर्फ एक ग्लास सुबह और फिर पूरे दिन थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिएगा। कितना पानी चाहिए ये वेदर, एक्टिविटी और आपकी हेल्थ पर डिपेंड करता है। तो आज से और अब से स्टार्ट कीजिएगा, फोन को बाद में चार्ज कीजिए, पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट कीजिएगा, क्योंकि दिन की शुरुआत नोटिफिकेशन से नहीं हाइड्रेशन से करनी चाहिए। ये एक हेल्दी मंत्र था, याद रखिए।
1: Only on MGM 90.8 FM.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है

खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया।

अपने छत्रपति संभाजीनगर में सिग्नल तो है लेकिन चलते है क्या? यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, आरजी अदनान आपके साथ है। और बात कुछ ऐसी है कि शहर में जो सिग्नल है वो सीधे साधे नहीं है, नॉर्मल नहीं है, दैट्स कॉल्ड स्मार्ट सिग्नल्स। जी हाँ, स्मार्ट तरीके से सिग्नल चलते हैं कि उल्टी गिनती कभी को आरियत शुरू कर देते और उल्टे तरीके से सिग्नल चलते है। कभी ग्रीन सिग्नल होता है तो रेड लाइट लगती है और कभी रेड लाइट पर ग्रीन सिग्नल दिखाई देता है। कुछ इस तरीके से टाइमिंग इसका हो रहा है। और जो टाइमर होता है ना लगाया हुआ, वो कभी कभार बीच में रुक जाता है, सही चलता है तो कभी रॉन्ग तरीके से चलता है, बीच में ही ना तो सिग्नल बंद हो जाते हैं, चलते चलते सिग्नल बंद हो जाते हैं और टाइमर तो दिखाई ही नहीं देता। एंड इस वजह से सेवन हिल के पास ना तो

ट्रैफिक जाम हो रहा है, और बस सेवन हिल्स ही नहीं, समर्थ नगर, मिल कॉर्नर और शहर में के बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स है जो कि स्मार्ट है लेकिन खराब हो चुके हैं, और इसका मेंटेनेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट इसके ऊपर कोई ख्याल नहीं दे रहा है। और ये आज से नहीं, बहुत टाइम से ये सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, खराब खराब और खराब वाली, लेकिन इसको ठीक ठीक और ठीक करने वाला टाइम अब तक आया नहीं। शायद जब टाइम आएगा तब ये ठीक करेंगे, लेकिन कब होगा पता है क्या? जब तक इस सिग्नल की वजह से कोई बड़ा हादसा ना हो या किसी की जान ना चली जाए या कोई जख्मी ना हो जाए, तब तक ये सिग्नल ऐसे ही रहेंगे। जब ठोकर लगेगी तब जाके ये सिग्नल ठीक हो जाएगी। और ट्रैफिक जाम तो अब रोज ही हो रहा है, तो इसकी आदत लग गई है। रास्तों का तो कुछ होता नहीं है मेंटेनेंस, इस सिग्नल का कब होगा ये भी नहीं पता। सो घर से थोड़ा जल्दी निकले ताकि आप डेस्टिनेशन पर वक्त पर पहुंचे। बाकी अब एंजॉय करें आरजे अदनान के साथ सुपर डुपर हिट गाने ऑन MGM 90.8 FM।

0: एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है अबाउट फ्रॉड के बारे में। हेलो, माय सेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। मोबाइल तो हम सभी लोग यूज करते हैं, मोबाइल के बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है ऐसा लगता है। फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, एसएमएस, ये सब कुछ हम यूज करते हैं और फ्रॉड इसी के जरिए बहुत होते हैं। एक क्लिक के जरिए, एक कॉल के जरिए या फिर एक लिंक के जरिए आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली होता है। तो डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड ट्रेंड्स इन इंडिया, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में पूरे साल में एसएमएस स्कैम सबसे ज्यादा बढ़ चुके हैं। 146% एसएमएस स्कैम हो रहे हैं। एक साल के अंदर तकरीबन 20,000 करोड़ से भी ज्यादा स्कैम हो गया है, इतना पैसा स्कैमर ने लूटा है एक क्लिक के जरिए। इसमें टॉप में है एसएमएस स्कैम, मतलब आपके पास एक एसएमएस आता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उस पर आप क्लिक करते हो लिंक पर और वो लिंक ओपन होने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट की बात होती है या फिर आपको डिजिटल अरेस्ट करने वाली बात होती है। कुछ ऐसे अलग अलग स्कैम्स होते हैं आपके साथ और आपके बैंक से पूरा पैसा गायब हो जाता है। और एक बात सामने आई है कि जो फ्रॉडर होते हैं वो पैसे पूरे ट्रांसफर होने तक आपके साथ बिजी रहते हैं, आपको बातों में उलझाते हैं और आपके साथ ही कॉल पर बात करते हैं। और ये क्यों करते हैं बताए? क्योंकि जब ट्रांजेक्शन होता है तो आपको कभी ना कभी शक हो ही जाता है यार ये ट्रांजेक्शन ऐसे कैसे हो रहा है, तो आप किसी ना किसी से एडवाइस लेते हैं। तो पूरा ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होने तक आप एडवाइस ना ले और उस फ्रॉड के साथ ही आप बातें करते रहे, उसके बातों में आपको उलझाता है ताकि फ्रॉड पूरा कम्प्लीट हो और पैसा उसके अकाउंट में आ जाए। तो ये एक टेक्निक वो यूज करते हैं। तो इन सब चीजों से थोड़ा बच के रहिएगा एंड जो एसएमएस आपके पास आते हैं वो वैलिड है, सच है या झूठ है ये भी आप चेक कीजिएगा, वरना एक क्लिक आपका नुकसान करवा सकती है। देखो, ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में अपने शहर में तो मैं हर दिन बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अपने शहर में भी ना बहुत फ्रॉड या ऑनलाइन हो रहे हैं। सो याद रखिए, कोई भी अननोन लिंक पर क्लिक मत करे, किसी भी एसएमएस को ओपन ना करे जो आपको पता ना हो और किसी भी मेल पर रिप्लाई ना करे जो अनआइडेंटिफाई हो। तो बी सेफ, बी केयरफुल।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: आपने कभी ऊंट की सवारी की है क्या? जिसने की है वो जानता है कि उस सवारी के दरमियान किस तरीके का अप डाउन हमें सहन करना पड़ता है। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM। अगर आपको ऊंट की सवारी करनी है ना, तो आप अपने सेंट्रल बस स्टैंड में जाकर भी ऊंट की सवारी कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ पर के रोड कुछ इस तरीके से बने हैं कि उस रोड के ऊपर से आपने गाड़ी चलाई या तो वहाँ से बस अगर गुजरती है ना, तो हमें महसूस होता है कि हम बस में नहीं बैठे हैं, हम ऊंट पर बैठे हैं। क्योंकि ऐसे डिक्की चिक्की करते हुए वो वहाँ से बस गुजरती है, क्योंकि इतने सारे गड्ढे हो चुके हैं और इतना रोड क्लीन हो चुका है। ऐसा हम कह सकते हैं कि एक नया मोमेंट हमें हासिल होता है सवारी का, सफर का। तो इसे कहते हैं एक अलग इनिशिएटिव लेना। आता लोग मदल्या रही है तर खड्डे ह्याच्यात काय असतं वेगळेपण? भाऊ ते खड्डे नाही, दॅट्स कॉल्ड समथिंग स्पेशल रास्ता। देखो भाई, मेरी इंग्लिश जैसी टूटी फूटी है ना, तो उससे भी टूटे फूटे अपने शहर के रास्ते है। तो शहर के रास्ते का तो हम सभी को पता है, लेकिन उससे भी डेंजर रास्ते और एरिया अपने सेंट्रल बस स्टैंड का है। मेरी बात पर आपको शक होगा ना, तो एक बार आप वहां पर जाकर देखिएगा। आपको इसका मजा नहीं आया ना, तो पैसे आप वापस ले सकते हो। खैर, आप क्या ही बोले। और हाँ, पिछली बार कहा गया था कि सेंट्रल बस स्टैंड का रिनोवेशन होने वाला है और पूरी तरीके से बस स्टैंड हमें नए रूप में दिखाई देगा। भाई कहाँ हो गया वो रिनोवेशन? कहीं हुआ है, दिखाई दिया है? नहीं ना। हाँ, बस कागज पर ही रिनोवेशन हुआ है शायद से, बाकी तो बस चलता है बोल के चलता ही आ रहा है। बस यहाँ के रास्ते नहीं, पूरा सेंट्रल बस स्टैंड ही खराब हो चुका है। काम कब होगा रिनोवेशन का, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर जवाब मिले तो मुझे जरूर बताना। और अगर ऊंट की सफारी करनी है तो सेंट्रल बस स्टैंड में जरूर जाकर आना। स्टे ट्यून्ड
1: only on MGM 90.8 FM।

मिसिंग था सुकून, मुस्कान, वो मैं खुश हूँ वो वाली फीलिंग। एक दिन वीकेंड पे टेरिस पर बैठा था, एक 8 साल का बच्चा दिखा उसे, पतंग उड़ा रहा था। पतंग कट गई। बच्चा हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, कल फिर से उड़ा लूंगा। राघव उस पल बस एक अपनी सोच में डूब गया कि मैं एक पतंग कट जाने के बाद भी हंस नहीं सका यार, इस बच्चे की हंसी देखकर भी। और ये बच्चा एक पतंग कट जाने के बाद यही कह रहा है कि यार कल फिर से उड़ा लूंगा। उसी दिन ना तो उसने डिसाइड किया, यानी कि राघव ने, कि हर दिन थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालेगा, कुछ नया करेगा बिना किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार किए। अब राघव वही काम करता है, वही जिंदगी है, लेकिन अब हर दिन थोड़ा सा जीता जरूर है, थोड़ा सा मुस्कुराता है, और जब पतंग कटती है तो कहता है कल फिर से उड़ाएंगे। यहाँ पर बात पतंग की नहीं थी, समझदार हो समझिएगा। तो दोस्तों, जिंदगी बड़ी नहीं है, बस बड़ी प्यारी होनी चाहिए। और अगर कभी लगे कि सब रिपीट हो रहा है तो याद रखना, एक छोटी सी उड़ती हुई पतंग भी जिंदगी बदल सकती है। और एक जरूरी बात के हमें जिंदगी बस

0: एक टाइम था यार जब ना तो हम कहते थे अरे ये जेंसी ये तो बस रील्स बनाते हैं, मीम्स शेयर करते हैं, दो मिनट से ज्यादा इनसे फोकस होता ही नहीं है। लेकिन जब किसी बात पर ये जनरेशन सीरियस हो जाती है तब सबको समझ आता है कि स्क्रीन के पीछे सिर्फ फिल्टर नहीं ओपिनियन भी होते हैं। और ये सिर्फ जेंजी ही नहीं मिलेनियल्स भी काम करते हैं ऐसे ही। एक जनरेशन ने इंटरनेट बनते हुए देखा और दूसरे ने इंटरनेट को अपनी आवाज बनाई, और वो आवाज किस तरीके से है आज हम सभी लोग देख रहे हैं। वैसे ऑफिस में भी ऐसे होता है जेंजी और मिलेनियल्स का। जेंजी सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस की बात नहीं करता बल्कि पूछते भी है कि ये प्रोसेस ऐसे ही क्यों है, इसको बेटर कैसे बना सकते हैं, अगर बॉस कुछ हद से ज्यादा ही परेशान कर रहा है या सैलरी लेट आ रही है या अपने काम से ज्यादा काम दिया जा रहा है तो मिलेनियर्स क्या करते हैं या 90s किड्स, उनको आदत हो गई है ना, चलो बॉस ने कहा है ना हम कंप्लीट कर देते हैं, आगे काम आ सकता है बॉस अपने लिए। लेकिन जेंजी ऐसा नहीं करते हैं, जेंजी डायरेक्टली कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते। इस वजह से जेंजी पसंद है भाई अपने को। देखो दोनों भी अपने अपने जगह पर सही है, मिलेनियर्स को और 90s किड्स को उस चीजों की आदत हुई है प्रेशर झेलने की, जेंजी वैसे नहीं है। तो अगली बार किसी जनरेशन को सिर्फ मेम्स या स्टेरियोटाइप से जज मत करना, क्योंकि जनरेशन की ताकत उसकी एज में नहीं उसके सोचने, सवाल पूछने और सही वक्त पर सही स्टैंड लेने में होती है, और सवाल पूछने की आदत जेंजी में बहुत है, नोटिस कीजिएगा ये चीज। एंड बाकी तो स्टे ट्यून
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: मुझे लगता है कि वक्त से वक्त निकाल करना तो इंसान ने कहीं ना कहीं घूमकर आना ही चाहिए ताकि थोड़ा ब्रेक मिल सके। मैं भी कुछ दिन पहले जयपुर गया था, इसके बाद फिर हैदराबाद गया था, ऐसे टूरिस्ट प्लेस गया था जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे माहौल देखने को मजा आता है। और एक बात मैंने नोटिस की रेलवे स्टेशन के ऊपर कि उन जगहों पर ना टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक डेस्क बनाया गया है जहाँ पर ना उस शहर में जो जो टूरिस्ट प्लेस है किस तरीके से वहाँ पर आप जा सकते हैं, पैकेज क्या है, इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो सवाल एक उठता है कि यार अपना छत्रपति संभाजीनगर पर्यटनाची राजधानी अपन असं म्हणतो त्याला, आपल्या शहरात 52 दरवाजे आहेत, 52 पुऱ्याचा आपला शहर आहे, इतका मोठा ऐतिहासिक वारसा आपल्याला लाभलेला आहे, पण टूरिझम डिपार्टमेंट कडून एकही मदत केंद्र ना बस स्टँडवर आहे ना रेल्वे स्टेशनवर आहे। तर अशा प्रकारचे मदत केंद्र इन्फॉर्मेशन डेस्क आपल्या शहरातील बस स्टॉपवर रेल्वे स्टेशनवर तयार झाले तर जे पर्यटक आहेत ना त्यांची गैरसोय होणार नाहीये। क्योंकि ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि जब टूरिस्ट अपने शहर में आते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं होती किस तरीके से किस जगह पर कैसे जाया जाए, तो वो रिक्शे वाले को पूछते हैं, टैक्सी वाले को पूछते हैं, और टैक्सी और रिक्शे वाले ना तो एक अलग ही ट्रेंड शुरू किया है बिजनेस वाला उन्होंने। मतलब कोई नया इंसान देखा उसको कहीं घुमाना है तो लोकल के अंदर तकरीबन 2,000 से 3,000 रुपए तक का भाड़ा वसूल करते हैं, एंड अगर आउट ऑफ सिटी जाना है, अजिंठा एलोरा जाना है, तो 6,000-7,000 या कोई 8,000 रुपए भी वसूल करता है टूरिस्ट से। और वो टूरिस्ट नए अपने शहर में होते उन्हें इतना पता नहीं होता है तो कुछ इस तरीके से उनसे लूट शुरू है। तो सवाल ये उठता है यार अपने शहर में भी इतना बड़ा टूरिज्म डिपार्टमेंट है तो उन्होंने एक हेल्प डेस्क या तो फिर इन्फॉर्मेशन डेस्क अपने शहर में शुरू कर देना चाहिए, फिर चाहे एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, ताकि जब टूरिस्ट अपने शहर में आते हैं तो वो प्रॉपर प्लान कर सके कहाँ किस तरीके से घूमना है और उन्हें प्रॉपर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी सिटीज में मैंने देखा वैसे अपने शहर में भी हो सकता है, पर कब होगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जवाब मिलेगा बताऊंगा जरूर। अगर आप मौसम शुरू है घूमने का तो आप भी जरा घूम कर आइएगा, और बाकी तो सुनते रहिएगा।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: हर शहर की ना तो अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है।
1: Only on MGM 90.8 FM.
0: और उस पहचान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी धरोहर का, हमारा अपना शहर छत्रपति संभाजीनगर, जिसे हम प्यार से सिटी ऑफ गेट्स भी कहते हैं, याद तो है ना आपको। और ये दरवाजे सिर्फ पत्थरों से और लकड़ियों से नहीं बने, बल्कि इनमें छुपी है हमारे शहर की सदियों पुरानी कहानी, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान। यू नो व्हाट, भड़कल गेट हो, दिल्ली गेट हो, रोशन गेट हो, या फिर कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई हुई विरासत है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी धरोहर को जाने, उनकी अहमियत समझे और दूसरों तक वो कहानियां पहुंचाए, क्योंकि जब हम अपनी विरासत को संभालते हैं तभी हमारी पहचान आने वाले कल तक कायम रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी है मेरी माटी मेरी धरोहर अभियान, मेरे शहर की पहचान मेरी जिम्मेदारी है। तो अपने शहर की जो धरोहर है, जो अपने यहाँ पर ऐतिहासिक किले है, गेट्स है और भी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उनको संभालना, उनको मेंटेन करना और उनकी साफ सफाई रखना, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, बस प्रशासन की नहीं, मीडिया और आपकी भी है। तो ये बात का भी ख्याल रखिए, क्योंकि यही तो इतिहास है जो हम आने वाले जनरेशन तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए फिर अपने धरोहर को सिर्फ देखे नहीं, उसे जाने समझे और संभाल कर रखे। तो वादा कीजिएगा कि अपनी धरोहर संभालने के लिए आप भी मदद करेंगे, क्योंकि मेरी माटी मेरी धरोहर। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान।
2: All is well with RJ Adnan.

0: वो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जल ले दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हजार

सुनो सुनो ए भाई और बहनों, अरे मक्कन भाई छक्कन भाई सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।